0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाईयों ओमान कतर उर्दन बहरीन कुवैत हमला ईरान पारा अमरीकी फौजी अड्डन दिफाई निजाम के तबाह करण की दावा ईरान पारा अपने हुरमज बंद करण जो ऐलान ईरान पारा अपने हुरमज जो कंट्रोल हासिल करण की भी दावा कुवैत पारा ईरानी हमलन में टे सरहदी अडा आयल प्लेटफॉर्म तबाह थियण जो एतराफ़।

0: पाकिस्तान पारां अमेरिका ऐं ईरान विच में ॿीहर चिटाण वधण ते गणतीअ जो इज़हार। ॿिन्ही मुल्कनि खे सबर ऐं बर्दाश्त खां कम वठण जी अपील। परडे॒ही खाते जे तर्जुमान चयो आहे त समूरियूं धुरियूं चिटाण जे ख़ात्मे लाइ फौरी क़दम खणनि। धुरियूं इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त तहत पंहिंजे वाइदनि जी पासदारी कनि।
1: अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे छंछर ॾिहाड़े ईरान ऐं अमरीका हिकु बहितरीन मुआदे ते इतफ़ाक़ करे वरितो हो। ईरान एटमी प्रोग्राम समेत सभिनी इख़्तिलाफ़ी मामलनि तां हथु खणी वियो हो, पर ॻाल्हियूं ख़तम थियण जे हिकु कलाक अंदर अबन हुरमज़ में बहिरी जहाज़ ते ड्रोन हमिलो करे ॾिनो। अमरीकी सदर ट्रंप जो ईरानी क़यादत ते बीमार ज़हनियत जो बि इल्ज़ाम। अमरीकी सदर चयो त ईरान जे चेट ॼाईंदड़ कार्रवाई बाद अमरीका भरपूर जवाबी कार्रवाई कंदे शदीद बमबारी कई। अबन हुरमज़ बंदि न आहे थी, सभिनी जहाज़नि लाइ खुलियल आहे।

0: गडि॒यल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पारां अमेरिका ऐं ईरान खे तकरार ख़तम करण जी अपील। एंटोनियो गुतेरेस अमेरिका ऐं ईरान ते ज़ोर भरियो त उहे ताज़िन चक्रियुनि खे रोकिन ऐं उन्हनि खे ख़तम करण लाइ ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू कनि।
1: ईरान ऐं अमरीका छिकताण घटाइण ऐं सब्र ते मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ईरानी परडी वज़ीर अब्बास अराग़ची विच सां फोन राब्तो। ॿिन्ही अॻवाणनि पारां विच ओभर जे रुतियाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसाक डार चयो त खिते में अमुन इस्तक़ाम लाइ सफारतकारी थी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही परडी वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जी इतफ़ाक़।
0: बलूचिस्तान जे इलाइक़े

0: कनकोट पुलिस करमपुर में अगवाती वेल बाड़ी जीनत सोलंकी के बाजियाब कराए वरतो। फायरिंग के देवट में बाड़ी के अगवा मुलस धाड़ेल मारजी पे हो। बाड़ी जीनत सोलंकी के 16 जून से करमपुर के इलाके में घर अगवा कर पे हो। पुलिस चवना जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ए सेक्शन थाने की हद शालू मोड़ वट कार्रवाई कई वही। पुलिस के दिसंदे ही अगवा कर फायरिंग कई। जवाबी कार्रवाई में एक धाड़ेल पंजन ही साथियों की गोली लगन सब मारजी पे हो। मारजी वल धाड़ेल की सुणप अब्दुल नबी वल्द मोहम्मद हसन सोलंकी तौर थी है।
1: तेजगंज वेझो अकरी थाने की हद गोठ जफराबाद भरसाण जातल हथियारबंदन के हमले में एक जणो कतल। हथियारबंदन फायरिंग करे नौजवान आफ्ताब चांडो के कतल करे छड़ो। वाके जो कारण मालूम न थी सके। मकतूल जो मड़ रूरल हेल्थ सेंटर फेजगंज मुंतकिल।
0: सिंध के मुख्तलिफ जिलों में अज का किथे हल्की किथे तेज बरसात जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब सिंध के कुछ इलाकों में मिट्टी के तूफान की बगती कर छी। दादू कंबर शिदादकोट जिलों में अज कुछ हंधन से हल्के वसकार जो इम्कान। मिट्टी के तूफान भी सके तो। शिकारपुर कश्मोर सक्कर शहीद बिन हैदराबाद घोटकी नसरू फिरोज में बरसात जो इम्कान। सामूरी पट्टी वाले इलाकों में हल्की बरसात थी सके थी। कराची में इंदर 3 दिन दौरान मौसम जुड़ाली और घिमिल रही।
1: थाईलैंड की राजधानी बेबाक में थाईलैंड के राजधानी बेबाक में बार में डांस तकरीब दौरान बाह लगने सबब 27 जणा सड़ी फौत केतरा ही जख्मी थी पा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

जी हा समेन वापसि जेको आहियूं प्रोग्राम रोशन सुबुह में ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां सिंध जो वॾे में वॾो नेटवर्क जी एफ एम 88 ऐं समेन असांजो जेको सवाल आहे उहो आहे त सिंध जा समूरा शहर समूरा ज़िला सुहिणा पर खैरपुर ज़िले वारनि खे मुबारकूं तव्हां समझी विया हूंदा हालांकि अहिड़ो को किताबी सवाल न आहे अहिड़ो को इंटरनेट जो सवाल न आहे तव्हां महसूस करे विया हूंदा समझी विया हूंदा त असां खैरपुर वारनि खे छो था मुबारकूं ॾियूं ऐं खैरपुर वारा पाण ज़रूरु समझी विया हूंदा असां सां ज़रूरु कॉल ते राब्तो कंदासीं नंबर आहे 0333221322888 ते बि असां ॾे पंहिंजे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघनि था ऐं असां ॾे पंहिंजो जी एफ एम 88 जो जेको एफ एम जी आई डी आहे उन ते मोकिले सघो था ऐं इनबॉक्स में तव्हां असां ॾे मोकिले सघो था पंहिंजे सवाल जो सही जवाब 1118 ते सेंड कजो साईं मुंहिंजा हर माण्हूअ जी ज़िंदगी घरण जा तौर तरीक़ा उसूल ज़ाब्ता क़ाइदा मुख़्तलिफ़ थींदा आहिनि अहिड़ा माण्हू ज़िंदगीअ जे हर अमल में उसूल ऐं शर्तनि जो सहारो वठंदा आहिनि पर प्यार जे मामले में शर्तनि ऐं उसूलनि खां कम वठंदा आहिनि के माण्हू वरी तवकल जे आधार ते ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि अहिड़ा माण्हू प्यार में बि उसूलनि ऐं शर्तनि जा क़ाइल उहे वरी नाहिनि हूंदा ऐं उहे कंहिं सां प्यार कंदा आहिनि त बि ग़ैर मशरूत तौर ते उहे प्यार ऐं पहिरीं जे हासिलात लाइ प्यार नाहिनि कंदा उहे बस प्यार करण लाइ ऐं ॾियण लाइ ॼाणींदा आहिनि पोइ मोट में प्यार मिले या न पहिरीं पंहिंजो थिए या न त बि पहिरीं उन्हनि खे वणंदो ज़रूरु आहे ऐं जेकॾहिं कोई प्यार हुन खे ॾींदो या न ॾींदो पर हुन खे पंहिंजी ज़िंदगी जा जेके तौर तरीक़ा आहिनि उहे बहितर लॻंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे पहिरीं प्यारनि जो प्यार तमामु सुहिणो लॻंदो आहे ऐं जेको आहे सो वधीक हिन गाने ॿुधूं था त गाने वारो छा थो चवे

जी साईं मुंहिंजा इश्क ऐं प्यार दिलि जे वेस जा देस जा रहवासी आहिनि ऐं उहे दिलि जे चवण ते ई दिलि जे पेचरनि ते विखूर खणी पंहिंजी पंहिंजी मंज़िल जा राही थींदा आहिनि। इश्क ऐं प्यार जा फ़ासिला अकुल सां न पर हमेशा दिलनि सां थींदा आहिनि ऐं उहो ई सबबु आहे जो इश्क वारनि खे चरियो पागल वग़ैरह वग़ैरह जे लक़बनि सां बि सॾियो वेंदो आहे। हू बि अकुल जे ज़ोर ते हलंदड़ सियाणा माण्हू इश्क जे आहिनि ऐं प्यार जे पे खां बि अणॼाण हूंदा आहिनि। हा साईं मुंहिंजा प्यार कॾहिं बि पुराणो नाहे थींदो। जीअं जीअं ॾींहं गुज़रंदा आहिनि तीअं तीअं वक़्त सां प्यार में बि निखार ऐं जोभन ईंदो आहे। ऐं हाथम नाथन शाही जो ग़ज़ल जूं चंद सिटरूं आहिनि त इश्क कुराणो नाहे थींदो, प्यार पुराणो नाहे थींदो, जॾहिं जानी गॾु हूंदो आहे मन विगाणो नाहे थींदो।

0: पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: स्ट्रेंथ की हो तो आवाज भी स्ट्रेंथ की है। GFM 88 नेटवर्क स्ट्रेंथ की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: जीए एफएम
1: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

हमारा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है। और ये बड़ा खूबसूरत सा जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम वक्त की बात करते हैं तो जी 11:21 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है तमाम तलियों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं चाहे आप बस में है ट्रक में है रिक्शा में है कार में है बाइक में है जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी बट लेट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बबुल खुदा खैरियत है मौजूदा और तवक्कुल खुदा खैरियत है मतलब

Hey, tamam to log jo log yahan saal gira hai unko kahenge many happy returns of the day, happy birthday to you. Iske ilawa wo log jo ki bimar hain unko kahenge get well soon, aur wo log jo ki life mein kuch acha, kuch better, kuch bada, kuch unique, kuch different karna chahte hain, to wish you a very very best of luck. Bahut sari best wishes aap logo ke liye ki aap apne har kaam mein kamyab hote rahe. Ameen. Iske ilawa meri awaaz jin jin galiyon aur shabaron, shehron aur sharahon, wadi aur pahadon, daryaon aur margozaron, gharon aur bazaron, choti badi karon, mere parastaron ya karod hazaron mein suni ja rahi hai. Tamam sunne walon ko, chahne walon ko, mohabbat karne walon aur nafrat karne walon ko bhi dil se kahenge marhaban bikum, ahlan wa sahlan, marhaba, bakhair aagir leti ayan, sab bismillah, bonjour, shaam niha, and welcome into Zindagi Gulzar Hai. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना. और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना हम सुनेंगे द वन एंड ओनली अली जफर की आवाज में. स्टे ट्यून्ड.

जी और प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, दैट इज www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलेगी पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग, जो कि आप करेंगे और कर सकते हैं तो जरूर करें और मेरा साथ दें पूरी पूरे 1 बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरे एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी कॉल्स के थ्रू. अब हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सुर लगाओ गाना सुनाओ. सुर लगाओ गाना सुनाओ में आप लोग मुझे एक गाना सुनाएंगे कॉल पे आने के बाद, और वो गाना आपका उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. सो मेक श्योर कि आप जो गाना गा रहे हो वो जो गाना है वो रोने धोने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और वो तमाम तो लोग जो कि पहले पिछले बहुत सारे शोज में इस सेगमेंट में कॉल कर चुके हैं और बहुत सारे गाने वो इस सेगमेंट में सुना चुके हैं, तो मेक श्योर वो गाने भी रिपीट ना हो. ठीक है, आप लोगों ने नए गाने लेकर आने हैं, रोने धोने वाले नहीं लेकर कराने. ठीक है, नए का मतलब ये है कि जो आपने पहले सुना दिए उनमें से कोई भी ना हो और डिफरेंट सॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, तो ये है. अच्छा, कॉल्स लेने जा रहे हैं आप लोगों की बहुत सारी. एंड हियर कम्स द फर्स्ट कॉलर. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: हाफिज लखमीर से बात कर रहा हूँ.
0: लखमीर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का करम है. आप सुनाए.
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाना सुनाए.
1: है मथुर सुनी मखा मथुर सुनी.
0: एक मिनट, ये गाना आपने उस दिन भी गाया था, गाना चेंज करें. लखमीर भाई, हेलो
1: जी,
0: गाना चेंज.
1: जी, आवाज आ रही है?
0: जी जी, आपने उस दिन भी गाया था तो आप गाना चेंज. कोई दूसरा
1: अच्छा
0: जी,
1: गाना सुनिए. हाँ जी,
0: ओके. और कुछ कहना है?
1: ये फौजा फोटो की आवाज में गाना है. और मुझे मेरा दोस्त है आपके सामान दिलू साहब, चंदे दिलू साहब, मोहम्मद आलम साहब, गवर मोहन बचेमानी साहब, ये गाना प्ले करिए. तू भी छड़े में जानी, तू भी छड़े में.
0: चले, मैं इसको सर्च करती हूँ जी. और वैसे भी मैंने इस शो का रूल रखा है कि नहीं, इस सेगमेंट का हमारा रूल ये है कि जो भी बंदा आएगा जो गाना सुनाएगा वो रोने धोने वाला एक तो बिल्कुल भी नहीं होगा. आपका गाना रोने धोने वाला है थोड़ा सा, तो हम सर्च करते हैं, थोड़ा सा प्ले करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग और गाना सुना रहे हैं अच्छा सा. ओके, नेक्स्ट कॉलर. हेलो
2: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम है राजेंद्र, बात कर रहा हूँ.
0: कैसे भाई, ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: ओके,
2: आप सुनाएं
0: प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी.
0: कौन सा है?
2: हेलो,
0: क्या नाम है इस प्रोग्राम का?
2: प्रोग्राम का
0: ओके, गाना सुना दें फिर.
2: गाना हम नहीं गाते.
0: गाना नहीं आता?
2: गाना नहीं आते, सबान चाहता हूँ गाना सुनाए.
0: चले जी, मैं आपको खुद से सुनाती हूँ. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. 03000113488

साथ साथ कमेंट्स और मैसेजेस भी आप लोग ड्रॉप करते जा रहे हैं. सो बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स जिनको हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक गाना प्ले करते हैं. और मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने कोई अच्छा सा हंसने वाला गाना सुनाया हो. जितने भी गाने आए हैं मतलब सुनाए हैं, वो रोने धोने वाले सुनाए हैं. सो रोने धोने वाला गाना इज नॉट अलाउड इन दैट सेगमेंट. ठीक है, तो ये चीज जहन में रखते हुए गाना लेकर आना है, गाना गाना है. एंड हम क्या प्ले करें, हम एक अच्छा सा गाना प्ले करेंगे. एंड वो जो अच्छा सा गाना है वो होगा ये वाला, जिसको हम सुनेंगे, इंजॉय करेंगे.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक

0: प्रस्तुत लगाओ, गाना सुनाओ. नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम.
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. मैं क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक?
0: मैं ठीक ठाक हूँ. अगर भाई आप कैसे ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: खैरियत पर करम करम करम. क्यों मैम, कॉल चल रही है, दो मिनट हो गए फिर आपने बात की, कॉल चल रही है.
0: ब्रेक था ना?
1: ब्रेक नहीं,
0: ब्रेक
1: मेरे टाइम ही लगता है.
0: नहीं, असल में कॉल आपने उस टाइम की है, टाइम तो वही है ब्रेक का. है ना, हम तो टाइम से ब्रेक लेते हैं.
1: हाँ बाबा, तुम्हारी गलती हो ही नहीं सकती.
0: बस देख ले. अच्छा, इसी बात पे मेरे गाना सुना दें.
1: गाना मैं पूरा ना गाना है, अब वो गाना सुनाओ मुझे, छोड़ कर अकेला.
0: ओके, सुनाइए.
1: मुझे छोड़
0: एक मिनट, एक मिनट सागर भाई, एक मिनट. ये रोने धोने वाला थोड़ा साइड करे ना, कोई अच्छा सा गाना गाए ना. चहकता महकता दहकता.
1: कहने तो एक बात है, कर असल करता तेरा. कहने को तो एक बात है, कर असल करता तेरा. तेरा नहीं कोई गजल शायर लिखे, कैसे गजल शायर लिखे, ऐसे गजल. कहने को तो एक गीत है, कर असल करता तेरा. कहने को तो एक गीत है.
0: वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. ऐसे गाने आने चाहिए.
1: दोस्त मुझे, जब मैं बात करता हूँ तो दोस्त मुझे कहते हैं यार तेरी आवाज ऐसे बोलने में तो बहुत बदनी है, जैसे कोई बहुत बड़ा बुढ़ा बात कर रहा है. बात
0: और
1: जब गाता हूँ तो वो बोलता है यार जब तू गाता है तो कभी आवाज कहाँ से लेके आता. मैंने कहा भाई आवाज तो है, गायब गिफ्टेड.
0: बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं आप, और ऐसे ही गाते रहें. और मैं तो कहूंगी केस को और आगे लेके जाएं.
1: जी जी मैम, और टंगटर सर भी सुना दे ताकि मैं रिहर्सल करूँ.
0: टंग ट्विस्टर में इस गाने के बाद सुनाऊंगी, बताऊंगी मतलब.
1: अच्छा, सुनाएंगे?
0: ठीक है,
1: सुनाओगी? नहीं
0: नहीं, आप कॉल करेंगे तो आपको बता भी दूंगी ना.
1: चलो ठीक है, सुना भी देना कभी.
0: ओके, सुना दूंगी, सुना दूंगी. अल्लाह हाफिज. अब गाना

ओके जी, एक और कॉलर लेने जा रहे हैं नेक्स्ट, और चेक करेंगे ये कौन होगा हमारे साथ 03000134888। आज का टंग ट्विस्टर भी साथ साथ आपको बताते जाते हैं। आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा, ठीक है, ये कहना है कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा, कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा, ठीक है जी। तो ये कहेंगे, और ये जब कहेंगे, जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा जी हमारे सेगमेंट को, जिसका नाम होगा बोलो तो माने।

0: ठीक है।
1: जो चौधरी का चांद है वो तेरे
0: जी। अब इस गाने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना गाना है, सो गाना चेंज करेंगे। एंड सॉन्ग जो मैं प्ले करने वाली हूँ या कर चुकी हूँ, सॉन्ग कॉल्ड जलना बाय आतिफ असलम।
2: ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੂਡ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ।

0: अमरीका ईरान जो हिक ॿिए ते हमलनि जो सिलसिलो जारी आहे। अमरीका पारां ईरान जे मिज़ाइल ऐं ड्रोन सलाहियतुनि, फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, सामूंडी रेडार साइट्स ऐं नंढनि ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान जो बि अमरीका ते जवाबी वार, बहरीन कुवैत ऐं उर्दन में आला, बहरीन उर्दन कुवैत पारां हमलनि जे दावा। पासदान इनकलाब चयो आहे त हमलनि में अमरीकी फ़ौजियुनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे।
1: अमरीकी हमलनि कुझु महीननि दौरान थियल सिफारती कोशिशनि खे मुकमिल तौर ते तबाह करे छॾियो। ईरानी परदेही वज़ारत मूजिबि अमरीका अपना हर्मुज़ में खुलियल तौर मुदाख़लत कई, जंहिं सबबि ख़िते में अदम तहफ़ुज़ पैदा थियो ऐं आलमी बहरी कारोबार बि मुतासिर थियो। अमरीका अपना हर्मुज़ बाबति ओमान में थींदड़ इजलास बि रोकियो।
0: ईरान पारां अपना हर्मुज़ बंदि करण बाद आलमी मार्केट में तेल महांगो थी वियो। कचे तेल जे अघ में 4% ताईं वाध। ब्रेंट कचो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी वियो। अमरीकी कचो तेल 84.36 में फी बैरल विकिरो थियण लॻो। ॿियनि मुल्कनि जे कचे में तेल में बि वाध रिकॉर्ड।
1: बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोबान जारी, वधीक 5 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शेबान में जहनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दनि जो मजवी अंग 76 थी वियो। पाक फ़ौज, एफ़सी बलूचिस्तान ऐं पुलिस जो गडि॒यल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन दौरान खारजीन खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइयुनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शोबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग 114 थी वियो।
0: फैज़गंज वेझो ॻोठ ज़फ़राबाद भरिसां नौजवान क़तल। नामालूम हथियारबंद नौजवान आफ़ताब चांडियो खे क़तल करे छॾियो। पुलिस चयो आहे त मामले जी जांच करियूं पिया। इलाके वासियुनि चवण आहे त नौजवान खे पसंद परणे सां क़तल कयो वियो आहे। नौजवान कुझु अरसो पहिरियां पसंद जो परणो कयो हो।

अलारमियाबाद गरन जो पानीकोट खिलाफ एहतजाज राजू खानी रोड से धरना सुल्तानी केड़ाल मां निकरंदड़ मनाखी शाख में पानीकोट खिलाफ आबाद गरन एहतजाज कयो। आबाद गरन जो चवणा है त मनकाई शाख ते हजारे एकड़ जमीन आबाद थींदी आहे। पानीकोट सां फसल सड़ी रहियो आहे, पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।

0: लाड़काणे वेझो ॿिनि धुरीनि में झेड़ो, पुलिस फरियादियुनि खे लाकअप करे छॾियो। मुतासिरनि जो SSP चौक ते धरणो। ॻोठ हुसैन भुट्टो जे रहवासियुनि औरतनि समेत पाक किताब खणी पुलिस ख़िलाफ़ धरणो हयो। मुज़ाहिरीन मौजूद ॿारनि जी ॻाल्हि तां झेड़े बाद बासरनि तशदुद कयो। पुलिस असांजा 3 माण्हू लाकअप करे छॾिया आहिनि।
1: शिदादकोट में माल जे वापारी खां फुर ख़िलाफ़ शहरनि जो एहतजाज। रिंद बरादरी जे माण्हुनि फुर वाके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन चयो त फुर वाके खे 20 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पुलिस अञा ताईं कुझु बि न।
2: Claim the X Factor. It's time to make your next move. Pakistan's first ever XUV Suzuki Fronx.
0: آج مظاہرین جو سندھ بلوچستان دنگ
3: آپ سن رہے تھے GAFM نیٹورک پر KTN نیوز
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر GAFM 88 نیٹورک سندھ کی آواز
5: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252578 6।
6: जी हा, 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अच्छा आज का टूटूस है कि कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा, ठीक है ये कहना है कोमल ने कंगन को कपड़े में। कसके बांधा और जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोल देगा वो विन करेगा सेगमेंट को। सो देखते हैं कि आज का टंग ट्विस्टर कौन बोल पाता है और किसके लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो इस शो के नहीं, इस शो के नहीं सॉरी, इस सेगमेंट के, इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कौन?
1: नाजिया बात।
0: नाजिया कहाँ से बात कर रही हैं? खैरपुर से। ओके नाजिया, थोड़े से लाउडली बात करें, आपकी आवाज कम आ रही है। मुझे बताएं प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी आती है।
0: ओके टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगी? नहीं सुना?
1: नहीं सुना।
0: मैं बता दूं फिर बोलेंगी?
1: जी
0: मैं बता दूं? ओहो नाजिया बोला था, हाँ आवाज कम आ रही है, कहीं सही जगह चली जाओ। ओके नेक्स्ट कॉलर। हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। दुआ कवल कैसे?
2: ठीक हूँ
0: जी, मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताएं प्रोग्राम सुन रही हैं?

0: मुझे भी नहीं पता।
1: कोई काम नहीं है आपको, मेरा शो सुनती रहती है।
0: मुझे समझ नहीं आ रहा
1: अच्छा
0: मेरा क्या वास्ता था
1: क्या वास्ता, मतलब आप चाहती हैं कि आप मेरा शो ना सुने, कितनी बुरी बात है। कितनी बुरी बात है। अच्छा छोड़े सर, अब ये बताएं टंग ट्विस्टर सुना है, भूलेंगी?
0: पहले बता
1: मैं रिपीट करूं।
0: हाँ,
1: कोमल ने कंगन को कपड़े में कसकर बांधा।
0: ओके, कोमल ने कंगन को
1: कपड़े में कसकर बांधा।
0: ओके, कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा। कोमल ने कंगन को कपड़े में कसके बांधा। कोमल ने कंगन को
1: सही है। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा कहा। और कुछ कहना है? कहे ना, सोच में पड़ जाती है क्या कहें। चले कुछ नहीं कहना,
0: रोज तो तारीफ नहीं कर सकती ना मैं।
1: रोज रोज तो तारीफ नहीं कर सकती। हाँ रोज रोज कर ले, किसको बुरी लगती है तारीफ। किसको बुरी लगती है तारीफ बताए ना। चले ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ कबूल। वैसे ही कॉल करती रहूं मुझे, ताकि मैं आपको तंग करती रहूं।

0: और इस बात की खुशी सिर्फ मुझे होती है, सामने वाले को नहीं होती. उसको तंगी होती है, उसको इरिटेशन होती है. तो ये भी एक टैलेंट है आप में है. चलें फिर सब को तंग करते हैं मिलके. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो. कोई है? वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? कहाँ से?
1: बात कर रही हूँ.
0: शाजिया कैसे हो?
1: तुम आप कैसे?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ शाजिया. और प्रोग्राम सुनती है?
1: जी हाँ सुनती हूँ.

0: all her fingers in her hair.
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीम उल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: और सदका

वजीर आजम शहबाज शरीफ एक डी के दौरे से कतर पहुंची वो। वजीर आजम कतर के अगोणे अमीर शेख हमद बिन अलसानी के लाडाने से शाही खानदान से ताजियत कंदो। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद के इलाके पीर सोहावा में

0: वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद के इलाके पीरसवा में मुराद रेस्टोरेंट के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कालादम करार दी छो। अदालत सीडीए मेट्रोपोलिटन सिटी जो अपीलों भी मंजूर कर वरतियों। स्टे ऑर्डर भी खत्म। अदालत के ट्रायल कोर्ट्स की दरखास्त से जल्द फैसलो कराने की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिज़वी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में घणन नुकतन के सामू नए रखो वो। अदालत केस दाखिल करण नजरसानी से भी कावड़ कई। असा के जज्बाती फैसलो ना करो।
1: एम क्यू एम अगवान ए वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल जा पार्टी सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ते इल्ज़ाम। मुस्तफा कमाल चयो त वसीम अख्तर के गवर्नर सिंध तौर मुकररीअ खे खालिद मकबूल सिद्दीकी रोकियो। फैसलो कयो आहे त मुल्क जे मौजूदा हुकूमती मॉडल खे तब्दील करे इख्तियार ऐं वसीला शहरनि जे दुर ताईं पहुचाया वञनि।
0: फैज़गंज वेझो घोट ज़फ़राबाद भरसां नौजवान क़त्ल। नामालूम हथियारबंद नौजवान आफ़ताब चांडियो खे क़त्ल कयो। पुलिस चयो त मामले जी जांच करियूं पिया। इलाक़े वासनि चयो त नौजवान खे पसंदि पड़णे तां क़त्ल कयो वियो। नौजवान कुझु अरसो पहिरियां पसंदि जी शादी कई हुई।
1: अहमदपुर भरसां एके खानदान जा टे ॿार पुरसरार बीमारी सबब फौज सिहत खातो ख़ामोश। कंहिं नोटिस न वरितो। वॾा मैसर जे सूमरा पाड़े जा रहवासी कई खानदान जा टे मासूम ॿार पुरसरार बीमारी वगे फोतिया। फोतियुनि में गुलाम मुस्तफ़ा कबीर ऐं निसार सूमरो शामिल। फोती ॿारनि जे वारसनि जो चवण आहे त असांजा टे मासूम ॿार हफ़्ते अंदर हिक ॿिए पुठियां फोत थी विया आहिनि। नोटिस वठी पुरसरार बीमारी जी जांच कराए ॿारनि जूं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि।
0: तलार में आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। राजो खनानी रोड ते थियणो। सुल्तानी किनार मां निकरंदड़ मनाखी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो। आबादगारनि जो चवण आहे त मनाखी शाख ते हज़ारे एकड़ ज़मीन आबाद थींदी आहे। पाणी खोट सबबि फसल सड़ी रहियो आहे। पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।
1: लाड़काणे वेझो ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो पुलिस फरियादनि खे लॉकअप करे छॾियो। मुतासिरनि जो SSP चौक ते धरणो। ॻोठ हुसैन भुट्टो जे रहवासियुनि औरतनि समेत पाक किताब खणी पुलिस ख़िलाफ़ धरणो आयो। मुज़ाहिरीन मौजूब ॿारनि जी
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताबन से। तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है? तो बिल्कुल जी बताएंगे। अगर आप भी खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा वाला सीन बन सकता है कि अगर आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन भी रखें और आपकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती भी रहे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बिल्कुल ये पॉसिबल है जब आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी अपना तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, फॉरवेज एंड टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आखिर सिद्रा के साथ मौजूद, तो यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते हैं, सबको जनाब वेलकम एंड खुश आमदीद। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ आप जरा अपने हाल चाल बता दीजिए। सो डियर लिसनर्स, अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत है? उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबको मूड के साथ सबको प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ ठीक अब से लेकर पूरे पूरे

तीन बजे तक का साथ, तो तीन बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी। इतनी सारी जो है ना वो बातें करेंगे, मजे मजे के गाने सुनेंगे और आप लोगों को वाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे

मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम करने के फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी ली हैं, तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरी की चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 फुल की समा लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 फुल की समा लाते हैं, और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नाद के साथ। तो बहुत खूबसूरत सी नाद आज सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडीज के ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अमरीका ईरान जे हिक ॿिए ते हमलनि जो सिलसिलो जारी आहे। अमरीका पारां ईरान जे मिज़ाइल ऐं ड्रोन सलाहियतुनि, फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, सामूंडी रेडार साइट्स ऐं नंढनि ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान जो बि अमरीका ते जवाबी वार, बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला, कुवैत पारां हमलनि जी तसदीक, मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणण जी तसदीक। पाकिस्तान इनकलाब चयो त हमले में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी हमलनि कुझ महीननि दौरान थियल सफारती कोशिशुनि खे मुकमल तौर ते तबाह करे छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ारत मूजिबि अमरीका आमने हुरमज़ में खुलियल तौर मुदाख़लत कई, जंहिं सां ख़िते में अदम तहफ़ुज़ पैदा थियो ऐं आलमी बेरी कारोबार बि मुतासिर थियो। अमरीका आमने हुरमज़ बाबति ओमान में थींदड़ इजलास बि रोकियो। ख़िते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर, धुरियुनि खे सबुर ऐं साहब करण जो मुतालबो। परॾेही तर्जुमान चयो त धुरियूं छिकजाण जे ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते क़दम खणनि, इस्लामाबाद जे मफ़ामती यादाशनामे ते अमल करे सफारतकारी खे तरजीह ॾियनि। ईरान पारां अपना हुरमज़ बंदि करण बाद आलमी मार्केट में तेल महांगो थी वियो। कचे तेल जे अघ में 4 सैकड़ो ताईं वाध, ब्रंट कचो तेल 79.11 डॉलर फी बैरल थी वियो। अमरीका कचो तेल 74.36 सैकड़ो में फी बैरल विकिरो थियण लॻो। ॿियनि मुल्कनि जे कचे तेल में बि वाध रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी, वधीक 5 खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शाबान में जान भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दनि जो मजमू अंग 76 थी वियो। पाक फ़ौज, एफ़सी बलोचिस्तान पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन दौरान खारजी खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शाबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी पियल दहशतगर्दनि जो अंग वरी 114 थी वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिकु ॾींहं जे दौरे ते कतर पहुची वियो। वज़ीर आज़म कतर जे गुणे अमीर शेख हमद बिन ख़लीफ़ा अलसानीअ जे लाॾाणे ते शाही ख़ानदान सां ताज़ियत कंदो।

0: रहण वारे सुप्रीम कोर्ट जे फैसले खे कालादम करार ॾेई छॾियो। अदालत सीडीए ऐं मेट्रोपोलिटन सिटी जूं अपीलूं मंज़ूर करे वरितियूं। स्टे ऑर्डर बि ख़तम। अदालत जे ट्रायल कोर्ट्स खे दरख़्वास्त ते जल्द फैसलो करण जी हिदायत। जस्टिस हसन अज़र रिज़वी चयो सुप्रीम कोर्ट जे फैसले में घणनि नुक़्तनि खे साम्हूं नाहे रखियो वियो। अदालत केस दाख़िल करण ऐं नज़रसानी ते बि कावड़ कई। असांखे जज़्बाती फैसलो नाहे। वॾे वज़ीर ऐं क़ौमी विरसे बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर जी सदारत हेठि मिर्ज़ा मज़ार क़ाइद बाबति अहम इजलास। क़ौमी विरसे जे तहफ़ुज़ ऐं सहकार खे यकीनी बणाइण ते इतफ़ाक़। इजलास दौरान मज़ार क़ाइद ऐं भरपासे में कब्ज़नि जो नोटिस वरितो वियो। लाइन एरिया ऐं ख़ुदादाद भरिसां कब्ज़ा ख़तम कराइण ऐं सिक्योरिटी यकीनी बणाइण ते इतफ़ाक़। मुराद अली शाह चयो मज़ार क़ाइद लाइब्रेरियूं क़ौमी असासो आहिनि जंहिंजी हिफ़ाज़त सभिनी जी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं औरंगज़ेब ख़ान चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत सक़ाफ़ती विरसे जे तहफ़ुज़ लाइ पुरज़म आहे। एम क्यू मगवान ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जा पार्टी सरबराह डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सदीक़ी ते इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा कमाल चयो त वसीम अख़्तर जे गवर्नर सिंध तौर मुखर्जी खे ख़ालिद मक़बूल सदीक़ी रोकरायो। फैसलो कयो आहे त मुल्क जी मौजूदा हुकूमती मॉडल खे तब्दील करे अख़्तियार ऐं वसीला शहरनि जे दर ते पहुचाया वेंदा। मीरपुर खास में पुलिस जे कोर्ट कूड़े मुक़ाबले में मारियल डॉक्टर शाहनवाज़ क़तल केस जी ॿुधणी सिंध हाई कोर्ट जवाबदान जी केस ख़तम करण वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अदालत फैसले में चयो आहे त एफआईआर खे अहिड़नि केसनि में नई एफआईआर दाख़िल करण जो अख़्तियार नाहे। कानूनी ग़लती ते जवाबदान खे फ़ाइदो नथो ॾेई सघिजे। अदालत रुगो जांच मुंतक़िल करण जी हिदायत कई हुई। नई एफआईआर दाख़िल करण जो को हुकम नाहे ॾिनो। एफआईआर खे कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ एक्ट तहत नई एफआईआर दाख़िल करण जो अख़्तियार हासिल नाहे। एफआईआर जो केस चालान पिण अदालत में जमा थी चुको आहे। मामिलो कानूनी तरीक़े जी ग़लती आहे जंहिंखे दुरुस्त करे सघिजे थो। जांच करण इदारनि जी कानूनी तशरीह।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 3135525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਇੱਕ ਧਾਣਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਪਟਿਆਣਾ ਨਾਗਣ।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: साइट्स नंडन बेडन के निशानों बयान जो दावा ईरान जुब अमरीका ते जवाबी वार बहरीन कुवैत उर्दन में अमरीकी अड्डन ते मिज़ाइल एंड ड्रोन हमला। बहरीन उर्दन कुवैत पारा हमलन की तस्दीक मिज़ाइल एंड ड्रोन फिजा में नाकाम बनाने की दावा। पासदार इनकलाब चाहिए हमलन में अमरीकी फौजी अड्डन ए दिफाई निज़ाम के निशानो बनाया वो है। अमरीकी अमलन कुछ महीनों दौरान थियल सफारती कोशिशन के मुकम्मल तौर से तबाह कर छो। ईरानी परदेही वजारत मूजिब अमरीका अपने हरमज में खुलियल मुदाखलत कई जै सब खिते में अदम तहफुज पैदा थो। आलमी बहरी कारोबार भी मुतासर थो। अमरीका अपने हरमज बाबत ओमान में थन्दड़ इजलास भी रोको।

0: खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते पाकिस्तान पारा गणती जाहिर धुरियों के सबुर ए सहब करण जो मुतालबो। बड़े तर्जमान धुरियों चिकताण के खात्मे लाए फौरी तौर ते कदम खणन इस्लामाबाद के मफामदी यादाशनामे ते अमल कंदे सफारतकारी के तरजीह दियन। फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर बिन डीह के दौरे से तुर्किया पहुंची वह फील्ड मार्शल तुर्किया के अस्करी कायद से मुलाकातू फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुंचने से फियानदार आदर भाव किया वो। सिक्योरिटी जरन मौजूद फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी कायद से दिफाई सहकार से गाल बोल भी कंदो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी वधिक पंज खारजी दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन शाबान में जानम भिणो थींदड़ दहशतगर्दनि जो मजमूई अंग 74 थी वियो। पाक फौज एफ सी बलोचिस्तान पुलिस गडियल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ऑपरेशन दौरान खारजन के हवाई ए ज़मीनी कार्रवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शाबान ऐं ॿिनि ऑपरेशन ज़रिए मारजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 114 थी वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हिकु ॾींहं जे दौरे ते कतर पहुची वियो। वज़ीर आज़म कतर जे अॻूणे अमीर शेख हमद बिन ख़लीफ़ा अल सानिया जे लाराणे ते शाही ख़ानदान सां ताज़ियत कंदो। वफ़ाक़ी आईनी अदालत इस्लामाबाद जे इलाइक़े पीर सुहारा में मोनाल रेस्टोरेंट किरण वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कालादम करार दे छो। अदालत सीडीए ए मेट्रोपोलिटन सिटी जो अपीलू भी मंजूर कर वरतियों। स्टे ऑर्डर भी खत्म। अदालत के ट्रायल कोर्ट्स की दरख्वास्त में जल्द फैसलो करने की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिज़वी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में घणन नुकतन के सामू ना रखो पो। अदालत केस दाखिल कर नजरसानी से बकावट कई। असा जज्बाती फैसलो ना करो। वरे वज़ीर ऐं क़ौमी विरसे बाबति वफ़ाक़ी वज़ीर जे तरह थेठ मज़ार क़ाइद बाबति अहम इजलास। क़ौमी विरसे जे तहफ़ुज़ ऐं सहकार खे यकीनी बणाइण ते इतफ़ाक़। इजलास दौरान मज़ार क़ाइद ऐं भरपासे में कब्ज़नि जो नोटिस वरितो वियो। लाइन ज़रिया ऐं ख़ुदादाद भरिसां कब्ज़ा ख़तम करण ऐं सिक्योरिटी यकीनी बणाइण ते इतफ़ाक़। मज़ारियूं क़ौमी असासो आहिनि जंहिं जी हिफ़ाज़त सभिनी जी ज़िमेवारी आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर औरंगज़ेब ख़ान चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत सक़ाफ़ती विरसे जे तहफ़ुज़ लाइ पुरज़म आहे। एम क्यू मगवान ए वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल जा पार्टी सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी के इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा कमाल जो तो वसीम अख्तर जी गवर्नर सिंध तौर मुकर्रजी के खालिद मकबूल सदीकी रोकराया। फैसलो किया है तो मुल्क की मौजूदा हुकूमती मॉडल के तब्दील कर अख्तियार ए वसीला शहरों के दर तक पहुंचाया वेंदा। मीरपुर खास में पुलिस के कूड़े मुकाबले में मायरल डॉक्टर शाहनवाज कतल के बुधरी सिंध हाई कोर्ट जवाबदार ने केस खत्म करने की दरख्वास्त रद्द कर छी। अदालत फैसले में चाहिए तो एफआईए के अड़न केसन में नई एफआईआर दाखिल करने जो अख्तियार ना कानूनी गलती से जवाबदार के फायदो नथो दई सके। अदालत रुगो जांच मुंतकिल करने की हिदायत कई हुई। नई एफआईआर दाखिल करने जो हुक्म न डनो हो। एफआईए के कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ एक्ट तहत नई एफआईआर दाखिल करने जो अख्तियार हासिल ना। एफआईए वाले केस जो चालान पिण अदालत में जमा थी चुको है। मामलो कानूनी तरीके की गलती आए जैसे दुरुस्त कर सकते तो जांच कड़ इदारे की कानूनी तशरी में गलती की बुनियाद जवाबदार के फायद न तो दई सके। एफआईए के दाखिल कल केस के पुलिस केस तौर तस्वुर किया वे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स के पीपीएच में जम करण खिलाफ एहतजाज। हैदराबाद चंडो अलयार उमरकोट के कंबाद बन शहरों में लेडी हेल्थ वर्कर्स पारा एहतजाज। लेडी हेल्थ वर्कर्स तो पीपीएच में जम करण वो फैसलो कबूल ना। लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर डनो वे।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़।
3: GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: 不可以。
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: नौ किलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूला के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अमरीका जल्द आबनाए हुर्मस जो कंट्रोल संभाली तो जैं बाद आबनाए हुर्मस में गुजरंदड़ जहाजन का मुआवजो वरतो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते मुआदे की भंजकड़ी जो इल्जाम लगाईंदे चयो आहे त तेहरान सां 10 भेरा मुआदो कयो आहे ऐं हुन 10 भेरा ई मुआदो टोड़ियो आहे। आबनाए हुर्मस की हिफाजत करण जो अमरीका मुआवजो वठंदो। बियूं कौमूं अमीर आहिनि, केर असां मां उमेद न रखे त खेसि मुफ़्त में आबनाए हुर्मस मां गुज़रण डि॒नो वेंदो। जंग में ईरान खे बर्तनाक शिकस्त ॾिसणी पइजी रही आहे।

0: आबनाए हुरमस तां अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जो हिक ॿिए ते मुआदे जी भञ कढ़ण जो इल्ज़ाम। अमरीका जे ईरान जी फ़ौजी ताकतुनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम ते बम्बारी, मिज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी दावा। ईरान जा बि अमरीका ते जवाबी वार। बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक। मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाकाम बणाइण जी दावा। खिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो नाहे कयो, न कंदासीं। तेहरान जूं दिफ़ाई कार्रवायूं अमरीकी अॾनि ऐं थाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं आहिनि। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾिनि। पाड़ेसरी ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत में शामिल थिया त ईरानी फ़ौज जो जाइज़ हदफ़ हूंदा। खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर, धुरियुनि खे सब्र ऐं सहप करण जो मुतालबो। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते कदम खणनि। इस्लामाबाद जे मफ़ाहमती यादाश नामे ते अमल कंदे सफ़ारतकारी खे तरजीह ॾिनी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते तुर्किया पहुची वियो। फील्ड मार्शल तुर्किया जे अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। फील्ड मार्शल जो तुर्किया पहुचण ते शानदार आदर भाव कयो वियो आहे। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फील्ड मार्शल तुर्क अस्करी क़यादत सां दिफ़ाई सहकार ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदो। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शहबान जारी, वधीक 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शहबान में जनम भेड़ो थींदड़ दहशतगर्दनि जो मजमू अंग 79 थी वियो। पाक फ़ौज, एफ़सी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जो गडि॒यल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब ऑपरेशन दौरान ख़ारजियुनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवायुनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शहबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 117 थी वियो आहे। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ जी कतरी अमीर शेख तमी बिन हमद अल सानी सां मुलाक़ात। अॻूणे अमीर शेख हमद बिन ख़लीफ़ा अल सानी जे लाॾाणे ते ताज़ियत। मुलाक़ात दौरान अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़, वफ़ाक़ी वज़ीर अताब तारण ऐं ॿिया बि मौजूद हुआ। वज़ीर आज़म खिते जी अमुन ऐं तरक़ीअ लाइ मरहूम जी कोशिशुनि जी वाखाण कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं TFM ETH Network, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दुश्मनी।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
2: पाक फौज एफसी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जो गडि॒यल ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन दौरान खारजनि खे हवाई ऐं ज़मीनी कार्रवाइनि ज़रिए निशानो बणायो पियो वञे। 5 जुलाई खां ऑपरेशन शाबान ऐं ॿियनि ऑपरेशन ज़रिए मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 117 थी वियो। आबनाए हुरमज़ मां गुज़रंदड़ बहरी जहाज़नि खां ईरान जे टोल ते एतराज़ कंदड़ अमरीका जो आबनाए हुरमज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फ़ौज खे ॿीहर ईरान जे बहरी नाकाबंदी करण जो बि हुकुम ॾेई छॾियो। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त आबनाए हुरमज़ जो कंट्रोल जल्द अमरीका संभालींदो, जंहिं बाद आबनाए हुरमज़ मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। कंहिं लाइ बि आबनाए हुरमज़ मुफ़्त में न हूंदो। तहरान सां 10 भेरा मुआदो कयो आहे, हुननि 10 भेरा ई मुआदो टोड़ियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुरमज़ जो कंट्रोल संभालण न ॾींदासीं, ईरानी फ़ौज जो सदर ट्रंप खे जवाब। पासदारान इनकलाब चयो आहे त आबनाए हुरमज़ में मदाखलत खिते जी सलामती खे ख़तरे में विझी छॾियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुरमज़ जो कंट्रोल संभालण जी इजाज़त न ॾिनी आहे ऐं न ॾींदासीं। तकरार वधियो त जंग जी शोला ॿियनि मुल्कनि ते पखिड़िजी सघनि था।

कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ रोड़ी वासी डॉक्टर बैंक बाहर ही कतल। हथियारबंदन बैंक में पैसा कढ़ाए निकरंदड़ डॉक्टर आकाश का बैंक बाहर ही फुलुट कई। मजामत करण ते फौरन डॉक्टर आकाश के गोली हणी कतल कर छो। 25 लख रुपया फुरे फरार। मकतूल डॉक्टर के वारसन जो 3 तलवार से लाश रखी धरणो हणन जो चिताव। जवाबदारन के गिरफ्तार करण जो मुतालबो। फुर मजामत डॉक्टर के कतल जो आईजी सिंध नोटिस वरतो। रिपोर्ट तलब।

मेहर वेझो ज़ाल खे कारे इल्ज़ाम हेठ क़त्ल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार ॾोह जो एतराफ़। ॻोठ लौंग महेसर में 15 ॾींहं अॻु जवाबदार शाज़ेब उर्फ बेबू महेसर ज़ाल खे क़त्ल कयो हो। औरत जे सहुरे ख़ैर मोहम्मद बि गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। जवाबदार पारां ज़ाल खे कार ऐं इल्ज़ाम हेठि क़त्ल करण जो एतराफ़। ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मिटी जे तूफ़ान सां गॾु हल्की बरसाति। भांसदाबाद, गढ़ी खैरो, राधण समेत ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति। मौसम ख़ुशगवार।

0: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4

0: पाकिस्तान की शान, प्राण की पहचान, GFM88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

आबनाए हुरमज मां गुज़रंदड़ बहरी जहाज़नि खां ईरान जे टोल ते एतराज़ कंदड़ अमरीका जो आबनाए हुरमज मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां 20% फीस वठण जो ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी फ़ौज खे ॿीहर ईरान जे बहरी नाकाबंदी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त आबनाए हुरमज जो कंट्रोल जल्द अमरीका संभालींदो, जंहिं बाद आबनाए हुरमज मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खे 20% फीस ॾियणी पवंदी। कंहिं लाइ बि आबनाए हुरमज मुफ़्त में न हूंदो। तहरान सां 10 भेरा मुआदो कयो आहे ऐं हुननि 10 ई भेरा मुआदो टोड़ियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुरमज जो कंट्रोल संभालण न ॾींदासीं, ईरानी फ़ौज जो सदर ट्रंप खे जवाब। पासदारान इनकलाब चयो आहे त आबनाए हुरमज में मदाख़लत खिते जी सलामतीअ खे ख़तरे में विझी छॾियो आहे। अमरीका खे आबनाए हुरमज जो कंट्रोल संभालण जी इजाज़त न ॾिनी आहे ऐं न ॾींदासीं। तकरार वधियो त जंग जे शोला ॿियनि मुल्कनि ताईं पखिड़िजी सघनि था।

आबनाए हुरमस्तान अमरीका ऐं ईरान विच में शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी, ॿिन्ही मुल्कनि जो हिक ॿिए ते मुआदे जी भञ करण जो इल्ज़ाम। अमरीका जी ईरान जी फ़ौजी थाकन ऐं दिफ़ा वारे निज़ाम ते बम्बारी, मिज़ाइल ऐं ड्रोन साइट्स तबाह करण जी दावा। ईरान जा पिया अमरीका ते जवाबी वार, बहरीन, कुवैत ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला कया विया। बहरीन, उर्दन ऐं कुवैत पारां हमलनि जी तस्दीक, मिज़ाइल ऐं ड्रोन फिज़ा में नाका बणाइण जी दावा। हिते जे कंहिं बि मुल्क ते हमिलो नाहे कयो ऐं न ई कंदासीं। तहरान जूं दिफ़ाई कार्रवायूं अमरीकी अॾनि ऐं थाकनि ख़िलाफ़ हूंदियूं आहिनि। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त खिते जा मुल्क ईरान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन इस्तेमाल थियण न ॾियनि। पाड़ेसरी ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी जारियत में शामिल थिया त ईरानी फ़ौज जो जाइज़ हदफ़ हूंदा। हिते जी मौजूदा सूरतहाल ते पाकिस्तान पारां गणती ज़ाहिर, धुरियुनि खे सबुर ऐं सहप करण जो मुतालबो। परडेही तर्जुमान चयो आहे त धुरियूं छिकताण जी ख़ात्मे लाइ फौरी तौर ते कदम खणनि। इस्लामाबाद जी मफ़ामती याददाश्त नामे ते अमल कंदे सफ़ारतकारीअ खे तरजीह ॾिनी। برطانیہ جو ایران کے پاسداران انقلاب تے پابندی لگانے جو فیصلو برطانیہ کے گھرو وزارت پارا تصدیق۔ اسلامک موومنٹ آف کمپنیز آف دا رائٹ روس کے جے آر یو والنٹیئر کور پابندی مڈل تنظیمن کے فہرست میں شامل۔ حتمی منظوری لائے بل برطانوی پارلیامنٹ ڈاں موکلو ویو ہے۔

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: आई। हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।